करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट।

नमस्कार दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। ते मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा दे आई हूँ डोगरी रेडियो। ते आज मैं तुसी लगी हूँ सुनान डुगर प्रदेश दे डांस। जियां कि हर प्रदेश का कोई ना कोई फोक डांस होंदा है, उआं के इत्थे भी कुछ फोक डांस होंदे ने। जेड़ा सारे फोक डांसी को जेड़ा सब तो मशहूर डांस है फोक डांस, वो है कुड डांस। ते बाकी और जेड़े फॉर्मन डांस दे उन फुमनी, चौकी, भांगड़ा, गिद्दा, किकली, ढोल डांस ते कन्ने के कन्ने जागरण। ते ये है कुछ जेड़े फोक डांस डुग्गर प्रदेश च होंदे। तो सुनो इस एपिसोड का एक गीत।

वेलकम बैक दोस्तों, डोगरी रेडियो सुनना मता मता स्वागत है। मैं यहाँ डोगरन सोल नेहा शर्मा ते अस गल करा दे डुग्गर प्रदेश दे नृत्य दे जो इत्थे दे फोक डांसेस ने जिंदे च मैं जेड़ा पर्सनली पसंद है ते जो कि बड़ा गे अट्रैक्टिव ते बड़ा गे मशहूर डांस है वह है कुड डांस। कुड डांस जेड़ा है उस स्पेशली किया जाता है देवते दी स्तुति दे टाइम या फिर खेती दे टाइम हार्वेस्टिंग दे टाइम ते कुछ मेले भी ये ने जिथे जरूर एक कुड डांस परफॉर्म होंदा है। कई ऐसे त्यौहार ने बैसाखी का त्यौहार है लोहड़ी का त्यौहार है उस टाइम पर भी ये परफॉर्म किया जाता है कुड डांस। लोग अपने अंदर जिहड़ी खुशी है वह व्यक्त करते हैं इस डांस के जरिए देवते की स्तुति करते हैं इस डांस के जरिए। ते कन्ने के कन्ने एक अलग तरह की ड्रेस होंदी है जो इस डांस करने को पहले लोग वेयर करते हैं। ये डांस बेसिकली मेल डोमिनेटिंग डांस है। वैसे तो अजकल कुछ कॉलेज स्कूल कोरियोग्राफर्स की करते हैं ये विच कुड़ियाँ भी करुट दे नैट, पर एक टिपिकल जेड़ा डांस है फोक वो मेल डोमिनेटिंग डांस है जिहदे च जिन्ने भी भाई ने सैमी सर्कल ते फुल सर्कल च घूमते हैं गोल गोल कुछ स्टेप करते हुए बड़े हल्के

सुनांदे हैं डुग्गर प्रदेश दे कुट डांस दे बारे च मेरे द्वारा में या डोगरन सोल नेहा शर्मा ते ये जिया कि मैं तुसी दस्या नाग देवता दी स्तुति च भी एक किता जांदा है ते जम्मू प्रदेश दे जेड़े कि पहाड़ी इलाके नूं उत्थे ज्यादा किता जांदा है भद्रवाह होया मानतलाई होया पर अजकल कुछ लोग ब्याह शादियों च भी एक स्पेशल अट्रैक्शन वास्ते कुट डांस ट्रुप ही इनवाइट करते ने ते अपने कल्चर ही प्रमोट करते ने कुसे ना कुसे बहाने करने तुस भी यूट्यूब लिंक पर चेक करी सकते हो कुड डांस ते उत्ते तुस देख ही सकते हो कि कितना अच्छा एक वाइट कलर दी ड्रेस होंदी है जेड़े सारे मेल पांदे न चूड़ीदार जेड़ी डोगरी साड़ी ड्रेस है चूड़ीदार पजामी ते कन्ने एक उपर एक कमीज पांदे ने गोल पूरे इंदी जेड़ी अटायर होंदी है वो चिट्टे रंग दी होंदी है ते कन्ने के कन्ने पिंक या लाल रंग दी ये ओदे उपर कुछ चुन्नी टाइप कुछ बंदे न ते बड़ा के अच्छा लगदा है सारे इको ड्रेस सेमी सर्कल ते सर्कल च घूमदे ते म्यूजिक दी जड़ी मिठी मिठी लय है बड़ा के अच्छा समा बनांदी है हुन मेरा भी टाइम होई दा जाने दा ते तुस मी भी इजाजत दियो मैं फिर परती आगी टिल देन बाय बाय नमस्कार दोस्तों।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स हुण तीन लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
2: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
1: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
2: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
3: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
2: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
3: याद रखो, मोना मेंगी From Insurance for You
2: 416-509-1509
3: or visit insuranceforyou.ca।

0: सर्दी के दिन आने वाले हैं। अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए enbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।
1: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
3: पर ढिलो वीडियो ते जदों मर्जी आ जाओ। एबनीजर एंड गोर रोड 905-204-1313 जा ढिलोवीडियो.com। होर कोई सेवा?
4: और रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
5: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने।
4: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
5: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
6: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
5: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
6: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
5: 416-509-1509
6: और विजिट insuranceforyou.ca।
7: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों, वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार। मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता। मेरी एबसेंस विच असीं देखिया टैक्स इंक्रीज, हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता। जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता, मैं टैक्स घट रखे, बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती, सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लियांदा अते हजारां नौकरियां लियांदियां। सब तो इंपोर्टेंट, मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ।
8: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ।
9: ਉਹ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ
10: ਹੋਣੀ ਭਾਜੀ, ਆਪ ਕੀ ਲੈਣੇ ਆਏ ਹੋ?
9: ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ।
10: ਲੋ ਭਾਜੀ, ਇਸਕਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ।
9: ਘੀ ਟੇਸਟ ਕੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਖਾਤੇ, ਘੀ ਸਿਹਤ ਕੇ ਲਈ ਖਾਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਜੋ ਘਰ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਦੇ, ਜੋ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੀ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਟ੍ਰਸਟਡ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ,
10: ਨਾਨਕ ਘੀ ਭਾਜੀ,
9: ਨਾਨਕ ਘੀ ਚਾਹੀਏ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਵੀ ਚਾਹੀਏ ਸ਼ੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘੀ, ਤੋ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕ ਘੀ ਚਾਹੀਏ। ਸੋ ਗੁੱਡ, ਸੋ ਪਿਓਰ, ਇਟਸ ਨਾਨਕ।

0: ये वो है, ओके खैर वो चीज है। होर कम्युनिटीज कितने ना कितने दे डोंट माइंड, उन्होंने लगता कि आम चीज है ने, आप लोग कितने ना कितने कहने यार कि तुम जो कुछ करना अपने घर करो, पब्लिक के बच्चे में कहा तो तुम लोगों को दिखावा करते हो। एक कपल है अपनी कम्युनिटी का, उन्होंने विआह होया ते वैडिंग रिसेप्शन ते उन्होंने कितने ना पता नहीं एंट्रेंस वेले या उन्होंने कितने केकू कट्टन टाइम ते ना एक दूजे को किस कर दिता, ते उन्होंने वो गल की ते बहुत फैमिली मैंबरस ने उस चीज़ को निंदिया बुरा मनाया, कहिंदे यार भी बच्चों कोई संग शर्मी है नहीं गी भी इतने पांच सात सौ बंदा बैठा तुसी एक दूजे को पब्लिकली किस करी जा रहे हो। वह मुंडे के माँ बाप ने भी उन्होंने कहा कि तुसी आ की कर रहे हो, है भी कितनी गलत गल है, तुसी आपदे माँ बाप की भी कितने ना कितने शर्म मान लो। वह कहिंदे कि फिर की हो गया यार, साडा विआह होया हुण असी कहड़ा किसी रैंडम बंदे नूं किसी स्ट्रेंजर नूं किस कर रहे हैं, साडा विआह होया असी एक दूजे नूं किस कर दिता, एड्डी कीड़ी गल है, असी कहड़ा कोई गुनाह करता। तो वह पेरेंट्स भी तो बाकी फैमिली मैंबरस भी विआह तो बाद गल्लां करी जाण भी देखो मुंडे कुड़ी अजकल कोई संग शर्म नहीं मानते की कुछ कर रहे हैं। बट हुण देखो वह भी अपने थां ते कितना कितने ठीक ने सही ने, ब्याह होया उन्हां दा हुण यार इस युग दे इस जमाने दे बच्चे ने वो इन चीज़ नूं नहीं उन्ना देखो सीरीयस मानते। हुण पुराने समय तां कोई हथ फड़के भी नहीं सी तुरदा, पुराने समय तां कोई हागी नहीं सी करदा फैमिलीज दे सामने, हुण चलो दिन ब दिन कितना कितने चीज़ां चेंज हो रही ने। सो नंबर है अपना 9056733337। की तुहानूं लगता कि उस फैमिली ने कुछ गलत किया या बिल्कुल भी नहीं? यार उन्हें देखो आम जी चीज़ा ने एडी एडी केड़ी गल हो गई, उन्होंने कुछ गलत थोड़ा किया है, थिंग्स हैपन। हुण जनरेशन चेंज हो रही है, उन्होंने लगता कि यार असी कुछ रोंग नहीं कर रहे तो इट्स ओके, या थोड़ा लगता कि कितने ना कितने थोड़ी बहुत एक संग शर्म होनी चाहिए है बच्चों, कितने ना कितने थोड़ा बहुता ये जरूर सोचना चाहिए यार कि साडा कल्चर होर है, साडी एक कम्यूनिटी डिफरेंट है, सारे की सोच अलग अलग है, भी इन्होंने चीज़ों तो आप थोड़ा परहेज रखिए। नंबर है अपना 9056733337 9056733337 ते गलबात थोड़ी साडी होगी, तो लैट सी थोड़ा की ख्याल है। हुण तुहानूं लगता कि बच्चे थोड़े ज़्यादा खुल रहे ने, इन्ना नहीं होना चाहिए, या तो लगता कि यू नो फिर की हो गया, एड्डी केड़ी गल है जो उन्होंने थोड़ा बहुत कर दिता, तो हुण गोरियां च भी हुंदा ही है यू मे किस द ब्राइड, वो दे सगा ते कहिंदे आ कि करिया करो। आपा हजे भी यू नो उस सोच दे विच कि फैमिली दे मूहरे आई नहीं करना, कोई पेरेंट्स ने उन्हां दे अगे आई नहीं बिहेव करना। सो चलो नंबर है अपना 9056733337 9056733337 905 673 3333। की थोड़ा ख्याल है एंड थोड़ी जी थोड़े गलबात करांगे इस बारे ते होर भी चलो ये जुड़िया रड़िया मड़िया चीज़ा विच होणगिया। सो लैट्स टॉक, लैट्स गेट थोड़े की ओपीनियनस ने ते करदे हां थोड़ी जी गलबात थोड़े नाल 9056733337 9056733337 is one and only अपना नंबर ते आजो फिर। जी मैनी जी गुड मॉर्निंग सर, किवें हो?
1: मॉर्निंग नवी,
0: की हाल है
1: नवी? आई थिंक थोड़ा जा एक्सप्रेशन ऑफ लव स्पेशली एट दैट ओकेजन, असी दो को वेडिंग अटेंड की थी ते सिमिलर एग्जैक्ट सिमिलर सिचुएशन थी ते आई थिंक दे वर सपोर्टेड सारे वालो, नो वन फेल्ट ऑकवर्ड। बड़ी रिसेंटली वेडिंग अटेंड की थी ओदे च बिल्कुल अद्दा ही सीगा, तो आई थिंक इट वॉज ओके एंड एक्सेप्टेबल। जे ओ केड़ा कोई लाइक आई डोंट वांट एक्सप्रेस लाइक दे नॉर्मल हल्के जी केस सी, एक एक्सप्रेशन ऑफ लव सीगा। हां तो नो केड़ा ओपरे ने व्याह ने अच्छे तो ओपरे च भी चल रहा रहंदा।
0: नहीं सो तुसी किसी फंक्शन ते गए ते अपनी कम्युनिटी दा फंक्शन सी?
1: ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਗੋਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੋਆ ਚਲ ਜਾਓ ਹਰ ਵੈਡਿੰਗ ਚ ਹੁੰਦਾ ਯੂ ਮੇ ਕਿਸ ਕਿਸ ਦ ਬ੍ਰਾਈਡ ਸੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅਬਾਊਟ ਗੋਰਿਆਂ ਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚ

0: मम्मी मम्मी भूख लगी है, बर्गर खाना है।
1: ले तेनी मंगाई है ना तो कुछ घर ही बना दे।
2: ओहो चिंता करते हो, तवा किचन ते तीन मिनी बर्गर सिर्फ ते सिर्फ $7 मिल रहे।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702B23
1: License number 10394।

डोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारिया आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए हैं कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने 2 इन ब्रैम्पटन 1850 एल्बन रोड ईटोबीको। वधेरे जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165 ते 416-213-1165।

0: health insurance specialist from TalkTrace Insurance Agency.
1: मैं गुरप्रीत सिंह ढिल्लों वार्ड 9-10 तो रीजनल काउंसलर उम्मीदवार मैं 2014 तो 2022 तक तुहानू रिप्रेजेंट कीता मेरी एबसेंस विच असीं देखिया टैक्स इंक्रीज हाई क्राइम अते एक अजिही काउंसल जिस दे रेजिडेंस नू अनदेखिया कीता जदों मैं तुहानू रिप्रेजेंट कीता मैं टैक्स घट रखे बुजुर्गां लई बस सर्विस मुफ्त कीती सैटेलाइट पुलिस स्टेशन लिआंदा अते हजारां नौकरियां लिआंदियां सब तो इंपोर्टेंट मैं फजूल खर्च विरुद्ध आवाज उठाई अते तुहाडे कॉल्स अटेंड कीतियां हुण मैनू करप्शन नू रोकण लई तुहाडी मदद ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਭਰਖੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ
2: ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਪੇਡ ਫੋਰ ਬਾਈ ਦ ਕੈਂਪੇਨ ਆਫਿਸ ਆਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ

तेरी जुदाई में तो चल नहीं हुंदी। कैसी बात है, ये मोहब्बत की गल हो रही है, इश्क की गल हो रही है, उस इबादत की गल हो रही है, उस प्यार की गल हो रही है, उस नू एक दूजे दे जो मिलन का विछोड़ा पै जांदा है, उस वेले की गल हो रही है। तेनू मेरी जिहड़ी जुदाई है ना, वो जुदाइयां नहीं चल हुंदियां। कहिंदे हुंदे किसी नू ना कोई बददुआ देनी होवे, जा तेनू किते विछोड़ा पै जावे, ते पता उन्हूं पैंदा जिहदे नाल विछोड़ा पै जांदा है। जिस वेले इश्क दियां प्रीतां लगियां होंदियां ना, इश्क दी मुहब्बत दे विच एक दूजे चार अखियां दो हो जांदियां, ते मुहब्बत दे विच फिर तेरी जुदाई। हरजीत सिंह जी।

मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा। क्या यार लिरिक्स, क्या लिख गए जनाब वाणी है, क्या उन्होंने बातें। मेरी ईद वाला चन्न कदों चढ़ेगा, वाह।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे पाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने। बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड। तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आए कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट। हुण 3 लोकेशंस तो सर्व करदे ने। 2 इन ब्रैम्पटन, 1850 एल्बन रोड, ईटोबीको। वधेरे जानकारी लई कॉल करो 416-213-1165।
1: इंतजार हुण खत्म होया। रीमैक्स गोल्ड रियल्टी दे गौल्डी खुमान लेके आए हन साउथ कैल्डन विच प्रीमियम रिटेल अते ऑफिस स्पेस खरीदण दा एक होर सुनहरा मौका। पेश है कैल्डन कमर्शियल सेंटर, हाईवे 10 अते हाईवे 410 दे प्राइम इंटरसेक्शन ते 15 एकड़ विच बन रहा एक नवा कमर्शियल डेवलपमेंट। रिटेल अते ऑफिस यूनिट्स हुण सेल लई अवेलेबल हन। कैल्डन दी इस नवी कमर्शियल डेस्टिनेशन विच अपनी स्पेस अज ही पक्की करो। अपनी यूनिट अज ही बुक करन लई साडी टीम नाल कॉन्टैक्ट करो।
2: रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस तो करवांदा यार?
3: ओए कल्ला मैं नहीं, अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी को।
2: वाह यार, नंबर ता दई मोना जी दा।
3: हां जी, तुसी भी नोट करो, इंश्योरेंस कोई भी होवे,
4: इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी।
3: जेडे लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है। हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते।
4: याद रखो, मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू,
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca।
5: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कृषि आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157, 416-570-0157।

0: एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: ताजिया सब्जियां, फ्रेश फल फ्रूट, वधिया ग्रोसरी ते इंडिया तो आया तो हड़ा मन पसंद समान मिलेगा हुन वधिया रेट्स ते, क्योंकि तो हड़े अपने शहर विच आ गया अनाज मां। रोज दी ग्रोसरी होवे, चावल दाला आटा देसी घ्यो मसाले टी स्नैक्स या फिर इंडियन किचन दा कोई भी जरूरी समान, सब कुछ मिलेगा अंडर वन रूफ। फ्रेशनेस, वैरायटी, क्वालिटी ते वधिया प्राइसेस ले अज ही विजिट करो अनाज मां, एयरपोर्ट रोड एंड मेफील्ड रोड दे कॉर्नर ते एट 6141 मेफील्ड रोड यूनिट।
3: दोस्तों मैंने फिंगर बढ़ा ली ते मैं आ रहे जी 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर दे विच तुहाडे अपने शहर तुहाडी डिमांड दे
4: बदनाम करती नाल मैं ते क्यों दी मिठी चोरी लोकां पर।
3: साडा जिहड़ा लास्ट शो मई दे विच कीता सीगा ओह वी सक्सेसफुल रहा, और जिहड़े म्यूजिक नूं प्यार करन वाले नहीं पहुंच सके सी उन्हां दी पुरजोर फरमाइश दे उत्ते ये शो रिपीट किया जा रहा है।

बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो इसीलिए अपने अपने टिकट बुक कर लो ताकि इस बार इधर से शो मिस ना करो। तो मिलते हैं फिर 11 अक्टूबर नो टोरंटो रोज थिएटर शाम 7 बजे।

0: यारों के साथ जश्न या फैमिली के साथ करना हो जश्न, ढाबा ऑन द फॉल्स आए, टेस्ट का वादा और चॉइस भी ज्यादा।
1: दिल्ली वाला बटर चिकन, रोगन जोश, सोया चाप, बेस्ट वेज नॉन वेज बिरयानी इन द टाउन, बेस्ट वेज नॉन वेज एपेटाइजर या माउथ वाटरिंग मेन कोर्स खाना हो तो सीधा चले आए ढाबा ऑन फॉल्स, द बेस्ट फूड इन नाइग्रा फॉल्स। LLBO एंड बियर ऑन टैप ऑल्सो अवेलेबल, वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम द फॉल्स, फ्री पार्किंग। विजिट 5039 सेंटर स्ट्रीट नाइग्रा फॉल्स, कॉल 905-358-0864,
0: 905-358-0864, ढाबा ऑन द फॉल्स।

0: अजी आओ 170 गिल्डन रोड यूनिवर्स 17 170 गिल्डन रोड यूनिवर्स 17 टेलीफोन नंबर 6473021322 6473 1322 जेलो टायर सेंटर
1: ड्राइवरी सूट कर दिया जट्टा नू
2: सिंपली रोकी तू अपनी इंश्योरेंस किस्तों करवांदा यार
3: ओए कल्ला मैं नहीं अपनी कम्युनिटी दा हर बंदा इंश्योरेंस एक्सपर्ट मोना मेंगी जी कोल करवांदे ने
2: वाह यार नंबर ता दई मोना जी दा
3: हां जी तुसी भी नोट करो इंश्योरेंस कोई भी होवे इंश्योरेंस फॉर यू दी मोना मेंगी जी जेडे लाइफ इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस सुपर वीजा इंश्योरेंस अते हर तरह दी इंश्योरेंस दे लई भरोसेमंद नाम है हुणे कॉल करो 416-509-1509 ते
4: याद रखो मोना मेंगी फ्रॉम इंश्योरेंस फॉर यू
3: 416-509-1509
4: और विजिट insuranceforyou.ca
0: दोस्तों देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो नो या चलो AM 530 24/7 जिन्ने भी प्रोग्राम आउंदे ने उन्हां नूं सुनन वास्ते जां देश प्रदेश नूं लाइव देखण वास्ते लॉगिन करो साडी वेबसाइट नूं www.deshpradeshradio.com या www.deshpradeshtv.com लाइव सुनना चाहुंदे लाइव ते क्लिक कर लो जे वाच करना चाहुंदे आ तां ओह ते क्लिक करो जां फिर अपने IPTV बॉक्स दे उत्ते पंजाबी सैक्शन क्लिक करो ओहदे उत्ते जाके देश प्रदेश टीवी नूं क्लिक करो उत्थे तुसीं सुन भी सकदे हो वेख भी सकदे हो 24/7 दुनिया दे किसी भी हिस्से विच उडान भरन तों पहलां इक नाम याद रखो कोमल ट्रैवल एंड टूर्स डेस्टिनेशन बैडिंग करनी है शिप क्रूज लई जाना है जां फिर किसी आइलैंड ते हॉलीडेज वास्ते बुक करना है पैकेज तां कोमल ट्रैवल इंडिया पंजाब लई डायरेक्ट फ्लाइट बुक करन वास्ते हुणे कॉल करो कोमल ट्रैवल वालिआं नूं 905-239-7711 कोमल ट्रैवल एंड टूर्स
5: मैं हरसिमरन सिंह साडा शहर ब्रैम्पटन वध रहा है पर की साडियां सेवावां भी उसे रफ्तार नाल वध रहीआं ने पुलिस पैरामेडिक्स रीजनल रोड्स पानी अते सुरक्षा सेवावां लई तुहाडी आवाज रीजन तक पहुंचाउणा मेरी तरजीह है वार्ड 9 अते 10 तों आई एम कैंडिडेट फॉर रीजनल काउंसलर आउण वाली 26 अक्टूबर नूं वोट फॉर चेंज वोट हरसिमरन सिंह
6: ऑथराइज्ड एंड पेड बाय द कैंपेन ऑफिस ऑफ हरसिमरन सिंह

सर्दी के दिन आने वाले हैं, अगर आप ओंटारियो में रहते हैं और आपकी आमदनी तय सीमा के अंदर है तो आप एनब्रिज गैस से मुफ्त इंसुलेशन, ड्राफ्ट प्रूफिंग और दूसरी सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए nbridgegas.com/winterproofing पर जाएं। नियम और शर्तें लागू।

0: रेडियो प्रोग्राम देश परदेश प्राइम टाइम रेडियो सोमवार का दिन है। पीटरसन किचन कैबिनेट की मैं जानकारी दिया दोस्तों, ए टू जेड रेनोवेशन करते हैं घर की यह, और मैनुफैक्चर भी खुद करते हैं, इंस्टॉल भी खुद करेंगे। किचन कैबिनेट हो गए, क्लोज़ेट हो गए, बार बनाने या बेसमेंट जो भी बना देंगे, इन्हों को अपनी सी एन सी मशीन ने जिते कटिंग करते हैं, तो डोर कटिंग होंगी है, फैब्रिकेट तो क्वार्ट्स के काउंटरटॉप तराश के वो इंस्टॉल करते हैं। तुम इन्हों शोरूम में जाओगे, शोरूम से बनी बनी किचन कैबिनेट दिखाई है, पर नाल फैक्ट्री है उत्थे तराशते हैं, हर चीज़ बनाते हैं, फैक्ट्री लगी, मशीन लगी हुई ने। लीडिंग मैनुफैक्चर ने 271 ग्लिडन रोड, ग्लिडन तो कैनेडी के नेड़े, तो कैनेडी तो ग्लिडन के कॉर्नर से इन्हों का है। पीटरसन किचन कैबिनेट, रणजीत सिंह का नंबर है 6474004550
1: जी। ते नाले तुसी सोफा मार्टिन कैसा लैदर लाइन नू भी याद रखो, जिहड़े कि पिछले 28 सालां तों तुहानू कैनेडियन मेड बैडरूम सैट्स, सोफा सैट्स बहुत ही टॉप क्वालिटी दे विच प्रोवाइड कर रहे ने। तुसी इन्हां दे दोनों लोकेशन ते पहुंचो, जिन्ने भी तुहानू फ्लोर मॉडल्स दिखणगे ओह सारे तुहानू अप टू 60% डिस्काउंट दे नाल क्लीयरेंस दे उपर मिलणगे। ते नाल ही तुसी इन्हां दे कोलों फैब्रिक दे सोफे, जिन्ने मर्जी वड्डे तों वड्डे सोफे रेडी करवाओ, काउंटलैस कलर ऑप्शनस दे विच। जे तुसी लैदर दे सोफे बनाउणा चाहुंदे हो तां उहदे विच वी तुहानू 50+ कलर चॉइसिस मिलदियां ने। ते इन्हां दे वेयरहाउस विजिट करके तुसी फ्रेम एंड फोम दी क्वालिटी भी चेक कर सकदे हो। ते तुसी नंबर जरूर नोट कर लो, 24 रीगन रोड एंड 120 डेल्टा पार्क बुलेवर्ड, इन्हां दे दो लोकेशंस ने। नंबर 905-803-8056, 905-803-8056 या 905-791-8056, 905-791-8056। सोफा मार्ट एंड कैसल अदर लाइन दा नंबर है।
0: मॉर्गेज कोइन हैगी है नीलम सिबडोप, तो उन्होंने नाम तुम नोट करके रखो। वो कहते कि धड़लेदार लेडी है, कोई तो कोइन कहने असं मॉर्गेज की, इन्होंने रबता कैम करो, रीफाइनेंस करवाना, प्राइवेट फंड चाहिए, तो बैंक ना सीधी ताड़ी गलबात कराउणगे। जे कहते कि पहला बैंक क्रप्सी की है फिर भी लोन दवा देंगे, कहते इन्ना है, कहते है ना। ट्रस्ट नाम है नीलम सिबडोप, 6477398710 इन्हों का टैलीफोन नंबर है, 647-739-8710। रेडियो प्रोग्राम देश परदेश में जुड़े हो, लेने फिर अगली म्यूजिकल ब्रेक।

0: multiple locations in GTA. For more information, visit rajdhanisweets.ca.
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे ता याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस जिथे कि मैं भी गड्डियां नु लेके जाना रिपेयर दे लई रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम कर दे कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल सेफ्टी सर्टिफिकेशन उबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवानी है स्पेशलाइज कर दे ने इलेक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च स्टील्स एंड मेलनी रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-1498 रॉयल ऑटो सेंटर सेंट्रल मिसिसागा दे रहन वाले हो ए मौका ना गवाओ बैलीमोर होम्स वालों डेरी लेन टाउन्स जल्द ही डेरी रोड वेस्ट अते हरंटेरियो ते आ रहे ने कंटेम्पररी टाउन होम हाई $700,000 तो शुरू हो रहे ने सीमित समय ले एचएसटी दे विच खास बचत दा फायदा लो हाईवे 401 407 अते 410 गो ट्रांजिट शॉपिंग अते पियर्सन एयरपोर्ट तो सिर्फ कुछ मिनटा दी दूरी ते सब तो पहले बायर्स दे विच शामिल होण दा मौका ना गवाओ अज ही रजिस्टर करो ballymorehomes.com BALLYMORE homes.com

0: कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही मान महसूस हो रहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता करदे हां जिस दे ओह सचमुच ही हकदार हन। तुहाडा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन, कॉन्टैक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: कार वैन ट्रक दा कम होवे तां याद रखो रॉयल ऑटो सेंटर, रिलायबल अफोर्डेबल अते ऑनेस्ट सर्विस, जिथे कि मैं भी गड्डियां नूं लैके जांदा रिपेयर दे लई। रॉयल ऑटो सेंटर टेस्ला दे व्हीकल्स ते भी कम करदे आ, कोई भी रिपेयर किसी भी मेक एंड मॉडल, सेफ्टी सर्टिफिकेशन ऊबर लिफ्ट दी सेफ्टी करवाउणी आ, स्पेशलाइज करदे ने इलैक्ट्रिकल अते कंप्यूटराइज डायग्नोस्टिक कम च, स्टील्स एंड मेलनी। रॉयल ऑटो सेंटर एंड एमिशन टेस्टिंग 905-799-1478-905-799-1478-905-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478-909-799-1478